तो ये नई सरमाकारी की एकमतम ने कितनी पायदार काबिल इतमाद है, हमें यहाँ पर हम आहंगी के म्यार पर भी सवाल उठाना चाहिए। माज में किसी एक फ्राहम करिंदा या किसी एक मुल्क पर इंसार करने के भारी अखराज ऑटोमोबाइल फर्मों की निगरानी के खिलाफ स्ट्रेटेजिक अंधापन को बेनकाब करते हैं। सरमाकारी का माहौल फिलहाल इलेक्ट्रिक और खुद मुख्तार गाड़ियों के बारे में काफी पुरजोश दिखाई देता है। हम सार्फीन मकानी माशरे अचानक मुंतकली की वजह से होने वाले ज्यादा अखराज न काफी इंफ्रास्ट्रक्चर से पूरी तरह खुश नहीं है। यूरोप में कुछ कायमशुदा ट्रेड यूनियंस, लेबर यूनियन की रहनुमा दूर दराज के जोग्राफियों या सॉफ्टवेयर पर मबनी ने तश्कील शुदा कंसोर्शियम में पैदावार की तेजी से मुंतकली के बारे में गहरी तश्वीश रखते हैं। इसकी वजह यह है कि रवायती सनत के बरक्स इसने तकनीकी सरमाकारी ग्रुपों के लिए पैदावारी तनसीबात, माशरती विरसा या रोजगार का जरिया नहीं है, बल्कि वो डिजिटल असासे हैं जिनसे मुनाफे के अमल के जरिए इस खेल से बाहर हो जाएंगे। सामिन आजम ने हरे मैदानों से सड़कों तक फैलने वाली फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन लाइंस के किस तरह एक जड़ी ज्योग्राफी मीशत की तजर्बाकार की माहिर इख्तियार करने का जायजा लिया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब सिर्फ इंजन की ताकत आराम और आयश से ताल्लुक नहीं रखती, ये नायाब जमीनी अनासर सॉफ्टवेयर का गलबेस फारती चालबों आलमी तजारती जंगों का मजबू है। सप्लाई चेन में ये बुनियादी तब्दीली रुकावट रवायती सनती इदारों जवाबत को मतरू करने की सलाहियत रखती है। अगर खाम माल या टेक्नोलॉजी का छोटा सा कंसोर्शियम आलमी चिप बैटरी नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है तो खेल के असूल अब आजाद मंडी की मईशत नहीं बल्कि इन अचारातारियों इनके पीछे बड़ी ताकतों के जरिए तय किए जाएंगे। डिजिटल एटमी दौर से लाख खतरा की तरह सनती दुनिया ने अपने नई ताकत के मुहरकात कमजोरियों को जन्म दिया है। साम इसके साथ हमारा आज का सिलसिला प्रोग्राम इख्तिताम पसीर होता है। आइंदा हफ्ते दोबारा पेश खिदमत होंगे, तब तक के लिए अपने मेजबान इमरान अब्दुल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जुग्राफियाई मईशत।

सामिन, आखिरी बार आप सैर के लिए कब गए थे? या आइए अपना सवाल बदलते हैं कि आप रोज़ाना चहलकदमी करते हैं? चहलकदमी एक ऐसी वर्जिश है जो किसी भी मौसम में, कहीं भी और किसी भी उम्र में बगैर किसी खास आलात की ज़रूरत के की जा सकती है, चाहे शहर के दिल में हो, समंदर किनारे, पहाड़ों में या जंगल में। चहलकदमी एक ऐसा खेल है जिसे आप उस वक्त कहीं भी कर सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो दलील देते हैं कि पैदल चलना कोई खेल नहीं है, क्योंकि किसी के साथ मुकाबला नहीं है या स्कोर का मकसद भी इसमें नहीं है। ताहम हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत पर पड़ने वाले असरात को देखते हुए माहरीन का कहना है कि चहलकदमी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद वर्जिशों में से एक है। जब आप चलते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन दिमाग तक जाती है, मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है और दिल समेत जिस्म के पट्टे मजबूत होते हैं। आधे

घंटे से ज़्यादा की चहलकदमी के दौरान आपका मूड ऐसे हार्मोन्स की मदद से मुसबत तौर पर बदल जाता है जो खारिज होने लगते हैं। तनाव दूर होता है, जहन आज़ाद होता है, तखयल के दरवाजे खुल जाते हैं। मशहूर मुफक्किर नीत्शे तवील चहलकदमी से दर्द शकीका के हमलों की शिद्दत को कम करते हैं और चलते वक्त सोचते हैं। नीत्शे कहते हैं कि इसके ख्याल चलने से ही फूटते हैं। फ्रांस के इनकलाब के अहम तरीन नामों में से एक जीन जैक रूसो का कहना है कि वो सिर्फ चलते हुए सोच सकते हैं और इल्हाम का जरिया तलाश कर सकते हैं। हिंदुस्तान के सियासी और रूहानी रहनुमा गांधी की तरफ से अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू की गई गैर फाल मज़ाहमत का सबसे अहम हिस्सा 400 किलोमीटर तवील सॉल्ट मार्च है। बिलाशुबा हम अदब और फन की दुनिया में और भी बहुत से नामों के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन आइए अब सड़क पर आते हैं और तुर्की के पहले तवील पैदल चलने वाले रास्ते यानी लीकियन वे की वजाहत शुरू करते हैं।

तुर्की का पहला तवील पैदल सफ़र का रास्ता कदीम ज़माने के मारूफ खित्तों में से एक लीकिया से नाम लेता है। जज़ीरा नुमा अतीके का कदीम नाम, जो आज अंताल्या और फेतिया खलीजों के दरमियान वाक़ है, लीकिया है। यहाँ 23 शहर हैं जिन्होंने लीकियन लीग में तारीख का पहला जमहूरी इत्तेहाद भी कायम किया था। कदीम ज़माने में इसकी आबादी का तखमीना 2 लाख अफराद पर लगाया जाता है, क्योंकि यूनियन में बहुत अहम और शानदार शहर वाक़ थे। आज उनमें से कुछ शहर सियाहती मराकज़ के अंदर एक अड्डे में तब्दील कर चुके हैं और कुछ ऐसे खंडरात हैं जो सिर्फ शौकीन ही तलाश करते हैं। यहाँ तुर्की का पहला तवील पैदल चलने वाला रास्ता लीकियन वे, जिसका फासला 550 किलोमीटर है, ये मौका फराहम करता है। कदीम लीकियन तहजीब के निशानात का सुराग लगाना ये हैरतों से भरा रास्ता है, जहाँ फितरत और तारीख, समंदर और जंगल आपस में जुड़े हुए हैं। जो लोग पैदल चल सकते हैं वो 20 से ज़्यादा कदीम शहरों का दौरा भी कर सकते हैं। नीले और सब्ज़ रंग के दर्जनों शेड्स देख सकते हैं और वीरान कूफों को तलाश करने का मौका भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए तरजीहात के मुताबिक मुख्तलिफ रास्ते बनाए गए हैं। आपकी तरजीह जो भी हो, आप इसके मुताबिक सफ़र का इंतखाब कर सकते हैं और इस रास्ते से लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप चोटियों से इन शानदार कूफों को देखना चाहते हों, शायद साहिल पर डेरे डालना चाहते हों, हो सकता है कि आप कदीम खंडरात के दरमियान घूमना पसंद करें, हो सकता है कि आप जंगल में थीम की खुशबुओं के दरमियान रहना चाहते हों।

लेकिन वे दरअसल रोमन दौर में शहरों को मिलाने वाली आज़ाद सड़कों का एक सिलसिला है। तुर्की का पहला तवील पैदल चलने वाला रास्ता रोमन सड़कों और उस दौर के पुराने रास्तों के निशानात पर अमल करते हुए बनाया गया था। हर साल तकरीबन 30,000 लोग इस सड़क पर चलते हैं। यकीनन ये सब नहीं, क्योंकि 550 किलोमीटर की पूरी सड़क एक साथ चलने के लिए अच्छी हालत और औसतन 25 से 40 दिन दरकार होते हैं। अगर आप तजुर्बाकार हाइकर नहीं हैं तो कई दिनों के रास्तों का इंतखाब करने की सिफारिश की जाती है। लेकिन वे को बैन अलाक्वामी मार्किंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए निशान जद किया गया है ताकि पटरियों को आसानी से मुकम्मल किया जा सके। चौराहों पर लगाए गए पीले रंग के निशानात और रास्तों और कच्ची सड़कों पर सुर्ख और सफ़ेद लकीरें चलने वालों की मदद करती हैं। लेकिन वे पर गर्मियों के अलावा तमाम मौसमों में पैदल चला जा सकता है, क्योंकि बहिरा रूम की आबो हवा मुतदल है। इस कारोबार के माहिरों का कहना है कि बारिश पर तवज्जो देना ज़रूरी है, क्योंकि बारिश से ज़मीन फिसल जाती है, चीज़ों को चढ़ने और उतरने में कदरे मुश्किल होती है।

लेकिन वे दुनिया के तवील तरीन और 10 बेहतरीन हाइकिंग ट्रेल्स में से एक हैं। जैसे कि आप इस सड़क पर चलते रहेंगे, आप मारूफ कदीम शहरों के साथ साथ उन शहरों में भी जा बसेंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इनमें से कुछ बहुत अच्छी हालत में हैं, सिर्फ दूसरों के खंडरात ही बच गए हैं। डूबा हुआ शहर अपर लाई और उसके खंडरात, मायरा में पत्थरों के मुनफरिद मकबरे जहां सांता क्लॉस की मौत हुई, और शहर की कदीम बंदरगाह एंड्रिया के फेलोसेलेस हैं। सिमेना सार्कोफागी अपने खंडरात के साथ आधा पानी में और आधा बाहर है, और यकीनन यूनेस्को की दुनिया की आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल जानथोस और लेटून के खंडरात सिर्फ चंद कदीम शहर हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। लेकिन वी पर उन लोगों के लिए मुतासिर कुन इख्तियार मौजूद हैं जो

सिर्फ पैदल चलना चाहते हैं बल्कि तैराकी या धूप सेकना भी चाहते हैं। जादुई ओलुदेनिस मुनफरिद पतारा कबक बे बीच दुनिया के सबसे तवील कुदरती साहिलों में से एक है, जिसकी लंबाई 18 किलोमीटर है और ये

लेकिन वे एक तवील सड़क है जो नीले और सब्ज के दरमियान एक बसरी दावत पेश करती है, जिसमें पहाड़ों और समंदर के किनारे दोनों से दिलकश नज़ारे हो सकते हैं। इस सड़क पर चलते हुए जहां आपको वो शहर नज़र आएंगे जिन्होंने तारीख में पहली जमहूरी इत्तेहाद कायम किया, और अमन व सुकून मिलेगा। वो शानदार फितरत आपकी होगी और आप फितरत का हिस्सा होंगे। सामिन, इस प्रोग्राम में आज हमने तुर्की के पहले तवील पैदल चलने वाले रास्ते यानी लीकियन वे के बारे में बताया। नस्ली खान देरमेन जी ओलू के कलम से तहरीर करदा ये प्रोग्राम आपने सुना। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।